दर्शन पेटता उतरत उतरई पोखा चार पदार्थ आइट महासिदा काम तेन पार जात हर हर दुख नानका शरण गई सुख सागर

जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सर्वम् एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं चाओ पाई पुनराज का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा

सुनिवरिय ऊजो सदा हमारे पथ्या श्री अह तुजू करे अहो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे।

हो बिचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखण को शय करता।

होई अडेल सुने गोंग जो जाहे सो रसना पावई सुनै मूड चतलाहे चतुरताया वई दुख दर्द पाओ निकट नाम तेर नरके रहे हो जो जा की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई।

गरी बनेवाजा दाह जान कर कृपा करहु मोहे आर पराम आन दुआर तुहे अपना जान करहु व्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दै हाथी उबारू हमरे सब बैरियां संगारो प्रथम तरहु पग

प्यारे सतगुरु, न्यारे सतगुरु, दातारे सतगुरु, सिरजण हारे सतगुरु, पालण हारे सतगुरु, बख्शण हारे सतगुरु, सब दीन दुनिया दुनिया दे दुख दूर करन वाले प्यारे सतगुरु, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। प्यारे जी, आप अपने तख्तां ते सभाए मान बहुत प्यारे लग रहे। शुक्र है आप जियां दा, जो आप जी ने घड़ियां बख्शियां सतसंग दियां, अपने सब बच्चियां नू अपने हजूर सद बहा लिया। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आओ प्यारे सतगुरु जी नू नमस्कार करिए, अपनियां हाजरियां लवाइए। सब वीरां भैणां दे चरणां च बेनती, आप जी अपने हथ जोड़ो, अपने नैणा नाल सतगुर प्यारे जी दे दर्शन करदे होए बड़े प्रेम अदब सत्कार दे नाल सतगुरु जी नू सीस चुका के गज

सरपर का की मतलब होता है, पक्की गल है, गरंटी है। संगत जी फिर बेनती, जदों गुरबाणी नूं पढ़ना है महाराज जी का कला कला जो बोलिया होया अखर है वाचना है। सरपर गरंटी श्री गुरु अर्जन देव पातशाह लिख के कहिंदे निशान सिंह तू पाप करदा है गरंटी है तू लुटिया जा रहा है, डुबेगा भाई डुबेगा भाई। इस पंक्ति तो पता लग गया कि जे मैं पाप कर रहा रुक जा भाई हुण।

आप जी इस फोटो च एक गल वेखो, नोट कीती कि नहीं कुछ जी, इस अन्ने दी गुरुद्वारा साहब जी वाल पिठ है, जदों के मेरी पिठ थोड़ी, मेरा ते सतगुरु जी वालू मुख होना चाहिदा सी। अन्ना तां किया है, ये अखां तो अन्ना नहीं है, मत तो अन्ना हीणा हो गया है। कहिंदे इन्ने उस प्यारे वाल सारी उम्र पिठ कर छड़ी जिउंदे जी। जिन कीता जे मैनू माफ करना, जे इत्थे पता होवे मेरे गुरु नानक देव साहिब बैठे आ ते मैं पिठ करके बैठा, दे मतलब मैं अन्ना ही हाँ। जे अखां होण ते प्यारे जी इहनूं मुख ना करां।

सुख मांगे मोक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे जियो पिंड सब।

बोलना जी वाहिगुरू। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस रिठे शब्द खजाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाओ निधे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहिया की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ जार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मन होके दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जीआं दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जीआं दे पावन सरूप दे सुखासन दी सेवा होई है। सोहेला साहिब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़दिआं सेवा करदिआं भुल चुक दी खिमा बख्शन। आप जीआं दे भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होइ आई रहिण आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपन सेजा से विराजमान होवो। संगतान खुशियां बख्श। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत्ता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय। जय महाप्यान दूत जम दला है तय केवल नाम संग तेरा है चला है। जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिर माहे उदारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरा हर को नाम कोट पाप पर हर। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंद ना भराय हर का नाम जपत ने सु तराय। अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत अगावे। जे मार्ग ए जात अकेला पैहर नाम संग होत सुवेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लगबाही नाम जपत है पार बराही। अनक बिघन जाए संगारे हर का नाम तत्काल उदार है। अनक जोन जन्मै मर जाब नाम जपत पावे विश्राम।

मन सो दूर पर न छोड़ जाए तिसका श्रम कर संसाई तिस पर हर चंदन लेप उतारे तो हुए घर त प्रीत भसम संग होए अंधकुप में पतत विकराल नान काढ़ लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग बचारा करे दिन रात बाहर भेखंतर मन माया शब सनाए कश करे शपाया बाहर ज्ञान ध्यान शनान अंतर व्यापे लोभ सुमान अंतर अगन बारतन स्वाहा गल पात्र कैसे तरा अथाह जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गे लिह ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा नस्कैये तो समझे पूरा कहाँ बिशन बद गावे गंग जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो भाव सगवन करता करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाई सो आवै ना चीज जो बैराई तास्यो प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसाय अनंत के माया रंग रसाय दृढ़गर माने मने प्रतीत काल आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रो याहु जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो अपन घर कर तुम ठाकुर तुम पह अरदास जियो बिन सब तेरी रास तुम मात पिता अम्बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कुए ना जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते वसु आज्ञाकारी तुमरी

ब्रह्मज्ञानी का राय अभिमान। ब्रह्मज्ञानी उच्च दिव चामन अपने सप्ते नीचा ब्रह्मज्ञानी सेजन पहे नानक जन प्रव्याप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना तमरस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब पर माया। ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा ना पया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक प्रयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी परोपकारो माह। ब्रह्मज्ञानी का नाहीं धंधा ब्रह्मज्ञानी ले तप्त बंधा। ब्रह्मज्ञानी का सफला ब्रह्मज्ञानी सफल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल

पंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ भरता ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सरनान ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का गौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अदा खेर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर

तर्गे संसार बिन भक्ति तनम सीशार सर्व कल्याण सुख निधनाम बुढ़ जात भाई विश्राम सगल दुखा अवतनास नानक नाम जपो गुणदास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र अंतर एही स्वभाव नेत्रो पेक दर्श होए मान विकसा साध चरण धोए भक्त जना के मंत्र रंग बिरला गौ बाबा संग एक बस्त दीजे कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही ना जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभक्षंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुम्हारी शरण पर भगवान सर्वकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम खर के गुण गाए अनुगराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत परिसो करनी सो बात रवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा

आपे ही फिर जाप अष्टपति जब कारे काशना दृष्टिता पापन जब कहते होता जब तारिया पन सुन समाता वैर विरोध के संकमाद जब जिसका वर्ण चेहना जब तब तब हर जो कहो कैसे व्याप्त अपने जब अपने आप आपार ब्रह्म तब हो कहाँ कि सुबत परम अपन खेला भरतीजा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तर है तब कमल ने डर कमल का तो डरा अपन जलताव करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसंद है जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगदे तब कौन छुटे कौन बंधन बद्धे अपने आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ही पर जा जय निर्मल पुरख पुरख बात होता तैबिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन गो मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल छद्र लगत गौ कीश जय जो सुरभि जो संग समावे तय किसे भूखा मंत्र बतावे करण करावन करने हार नानक करते का नाह समार जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे परवीन तय वेद कतेब कह कौचीन जब अपने आप उतार तो सगन आप सगन कहाँ बिचारा जे अपन चाप नाप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा शल अशेद अभे समाया मुहा किसे बेआपत माया आपस को आप या देश ते गुण का ना ही प्रवेश जा एक है एक एक भगवंता तय कौन अजिंद किस लागे चिंता जे अपने आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हार बहु बयान दूजते उचा नानक आपस को आपे पहुचा जा ब्रजो प्रपंच आकार ते गुण में किन्नो विस्तार पापंदा पही कहावत गौ नर गौर स्वर्ग बन शावत आर जाल माया जंजा राम मो प्रंभ बहार दुख सुख मान अपमान अनुक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा आए खेल संकोच है तो नानक एक है जब अवगत भगत है आप जब पसरे पास आर संत प्रताप दोह पा का आपे तनि उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौता करे आनंद चो जापे रस भोग अंदर जोग जिस भावत सब पन्ना इलावे जिस बाबत खेल खिलाफ वे समार अथा अगंत अतुल्य

पूरे के गुणगाव अष्टपदे पूरे गुरु का सुनपदेश पारब्रह्म निकट गर्भेघ सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चेंद आस अनित त्यागोतरंग समझना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती करहो सा संग अगन सागर तरो हर तन के पर लियो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गाओ गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंगवार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमली कला ले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार सबल जीवन सबल तागा संग जाके मल्लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल बांध के माथे नानक उदरे दिन के साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भय गुरते पूर्ण हुई सेवा की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम संदरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निबेख है हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण हुए सर्विच्छा ताकि पूर्ण हुए सर्विच्छा ताकि पूर्ण हुए सर्विच्छा ताकि पूर्ण हुए प्रधान प्रगट सलोए सप्ते उजपाए स्थान बहर न होवे आमन जान हर तनखार चले जन सोए नानक से प्राप्त होए खेम सांत रिदनम निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शनान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मध्य सकल ते उदास सुंदर चतुर्दत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन क्या मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एव निदान जप मन कोए सब जुग में तागी गत होए गुण गोविंद नाम धुन वाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मदान केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट परा सा संग मिटे संत कृपाते जमते छुटाए जाके मस्तक कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तजन आवे हर प्रभचीत जन्म मरणता का दुख निवार दुलाभ दे तत्काल उधार निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माए सवानी दुख रोग बिन से वह भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सबते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी।

तीर्थ नावा जेतस पावा विण पाणे के नाहे करी जे तीसरी उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख

की सुध। कर्म खंड की वाणी जोर तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया पारपूर।

क्रूर कर्मे। नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्म नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग

पूर्ण पुरुष अपार सर्व विषव रत्यो स्वयं पव कर्ण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुष आदेश धर्म धाम सो परम रहते अपूत आलाख्य अपेस अंग रंग नरंग जा कह जात पाद नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अण उत एक पुरुख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अभंग नाद मेक पुरुख अपार सर्व लायक सर्व कहायक सर्व को प्रत पार सर्व घंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जानही जेह रूप रंग अररेख परम वेद प्राण जा कहनेत पाखित नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र ना आवही वह चित मद पर शांत वह प्रसाद

पवित्र है। परथि से अधिसे अदृश्य अकृश्य भगवती शांत वय प्रसाद कहते क्या छिज देस है क्या भिज भिस है क्या गंज करम है क्या पांज भरम है क्या भिज लोक है क्या देत सोक है क्या बतूत वरण है के विभूत करने है।

करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं धली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र धान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पावन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है,

पृथ्वी और प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, परजुगत रूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है।

तोलनिवासन है, के सर्वल गवान है, हमें सलरवान है, तुमामल तमीज है, सुबह तल अजीज है, परम परम ईस है, सुबह तल अदीस है, अदेसल अलेख है, हमें सले अपेख है, जिमी नल जमा है, अमी कल इमा है, करीमल कमाल है, के जुरवत जमाल है, के तलंग प्रकाश है, के मितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के मितो विभूत है, के मितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के चलंग नाग है, के मितो भांग है, मद पर शांत व प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुण गान मुदाम, हर भर गांज हर नर पर भांज,

जान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चार सार की तार पछैया, तोरत देश मलिंद मुवासन माते गजान के मार मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हार, सो बात नहीं चक चार लवैया।

समानी कूड़ किसोए पहुते नाही मन साव सत समानी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जन्म निर्मल सदा रह गुरु नाले।

आया। मान चाओ भया प्रभागम सुनियार मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नित सखी है सोग दुख ना व्यापै।

पौड़ी चितेंद्र सब को वेखना त्री हेठ चलाएंदा आपे देवड़ी आई आपे ही कर्म कराएंदा वड़ा वड़ा वड़ा मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर पठी जे

सुख मन अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो पाई दुबिदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए

अंतर सहज समाणी एक अचर्ज जन देखो पाई दुबिधा मार हर मन वसाई नाम अमोलक न पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए सब मह वसै प्रभ एको सोए गुरमति घट परगट होए

वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: हम मैलिक तुम उज्जल कर दे, हम निर्गुण तुम दाता, हम मैलिक तुम उज्जल कर दे, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर स्याण, तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मूर्ख तुम चतुर स्याण, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा,
1: माधो हम ऐसे तू ऐसा।

0: नानक मंतन जाओ एहो नित प्रभु को लोड नानक मंतन जाओ एहो नित प्रभु को लोड
1: धन धन गुरु नानक देव जी महाराज तू ही निरंकार तू सदा सलामत तू ठाकुर रूप भगवान नानक की बड़ा बेनती
0: अपनी भक्ति लाए
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत तू ठाकुर रूप भगवान नानक की बड़ा बेनती अपनी भक्ति लाए मांगो दान ठाकुर नाम मांगो दान ठाकुर नाम धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नान धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम भुल चुक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सुहागा कला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बहुत बहुत
2: धन्यवाद सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसो हमारे नेमक नेमक तुम ही प्रतपालो हम बारग तुमरे तारे सजन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास बैठिया सोई है सवना दामे साहू जिस पास बैठिया सोई है सवना दामे साहू मैं नहीं कछ हो नहीं किस आहे न मोरा औसल अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा जैत श्री महला चौथा जिन हर हिरदे नाम न बस्यो तिन मात कीजे हर बांझा तिन सुनी